0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

पल्टनैबाट मैया ए साइले छुट्टीमा घर यहाँ सिधे बोलिदेऊ जिन्दगी के छ र।

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै देश।

பர்தைனே சசரிவே பர்தைனே பர்தைனே. எஸ் அம்மா, டாய்லெட் காரம் வச்சுக்குவே. चार हजार बुढाले टन्ने हालेछन् खाममा यो पाली. बुढाको व्यापार राम्रो छ क्या हो?

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: हाय, के गर्ने होला अब? सुगर पनि बढ्दैछ, थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ। कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
1: ए, तिमी यति चिन्तित किन? के भयो फेरि?
0: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
1: ए, अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
0: कस्तो खबर?
1: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
0: ए, साँच्चै?
1: अझै सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
0: ए, त्यो त झन् राम्रो
1: हो नि। डाक्टर पुनम आचार्य एमबिबिएस, एमडी केयु, आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सुरज राज भट्टराई एमबिबिएस, एमएस केयु, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
0: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
1: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
0: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
1: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
0: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
1: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
2: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
3: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
2: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
3: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
4: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
2: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
3: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
4: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98614169।
5: मन पर्यो त पर्यो, पर्यो
6: जब से तुमको देखा है।
7: सिंगापुर होलसेल,
8: नेपालगञ्ज सेतु बिक चोक,
9: सिंगापुर होलसेल,
8: नेपालगञ्ज सेतु बिक चोक, नामै काफी, क्या दामी।
0: लेडिज तथा जेन्ट्स सबै उमेर समूह र सबै प्रकारका डिजाइनका फेन्सी कपडा पाइन्छ।
10: आजै रोजौ है।
8: मन पर्यो त पर्यो, पर्यो
7: नेपालगञ्जमा एकमात्र ठाउँ, होलसेल मूल्यमा खुद्रा फेन्सी कपडा किन्न, रोज्न, छुन, लगाउन पाइने स्थान सिङ्गापुर होलसेल।
8: सिङ्गापुर होलसेल सेतुबेका चोक, अहिलेै जान पर्यो। हो, सिङ्गापुर होलसेल मल, नेपालगञ्ज सेतुबिका चोक। फोन 97-0-695-92-45, 98-28-36-50-65। सिङ्गापुर होलसेल मल।
11: समयमा पूर्व सूचना पाई, बहिय के जोखिम से ज्यान जोगाई, विपद बाजा बजा के नयाई, उहमारे पूर्व सूचना लैके नुकसान होए नै दी।
12: सर्वसाधारण मनै बहिया के खबर कैसिन के पैना।
11: जलो मौसम विज्ञान विभाग के पैसा नै लग्ना टोल फ्री नम्बर 1155 मा फोन कैखा लदियक बहाबो बहिया के अवस्था के बारे मा निशुल्क जानकारी ली।
12: गाउँ मा राखल साइरन के आवाज हो, लडिया किनार मा राखल रंग के अर्थ बुझी।
11: स्थानीय एफएम रेडियो टेलिभिजन हो, मोबाइल मा ऐना नेपाल टेलिभिजन हो, एनसेल के सावधानी एसएमएस नियमित हेर्न करी, रंग के संकेत बुझी पियर रंग सावधानिक संकेत लदिया में पानी के सतह बढ़ती बा सचेत रही सामान बंधना शुरू करी लाल रंग खतरा के संकेत बहिया कोनो फेन समय में गाँव में पैठे से की तुरंत घर छोड़ के सुरक्षित ठाउँ में जाई
12: पूर्व सूचना पाइल पाछ तुरंत करे पर्ना तैयारी बहिया ऐना चेतावनी पाइल लगत एक दुई घंटा आघ करे पर्ना काम घरक सक्कु जहान एक ठाउँ में जमा करना ओ छर छिमेक मफे सचेत कराई
11: नागरिकता जन्म दर्ता जग्गा धानी पुर्जा नगद हो गरगहना हेफे वाटरप्रूफ प्लास्टिक के झोला में राख के सुरक्षित करना घरम पालल पस्पहुआ डोरी में से छोड़ना या ऊंच सुरक्षित ठाउँ में लैजाई गर्भवती छोट बच्चा बुढ़ाइलो आपांग हुईल मनैन पहिल प्राथमिकता देखे सुरक्षित आश्रय स्थल ओहर लैजाई
12: स्थानीय सरकार के समन्वय में संचालित प्रबल परियोजना से जनहित में जारी

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: बर्जर पेन्स
2: ओहो आज डाई नै मजा लागत हो मजासे दवाई करेला कहटो
3: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत
2: ए बात त ठिक कैलो साच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त
3: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाउ उपचार गर्न सँगै एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक अपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पाजाइत छोट बच्चा हो भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कै जाइत
2: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
3: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
4: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
5: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-380 मोबाइल 98-580-30-479 र 98-480-21-380
6: बाबा के कान पिरात है दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है यतन कहाँ यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में यहाँ ढूसी भवा कान खजुआब कान से कम सुनाई देव कान बंद हो बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा कान के जाली में छेद भवा कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है बीटी सीआईसी आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है
6: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-480-2697 98-580-2697 और 98-014-83-697
8: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए
6: खुशी के खबर हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है
7: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज
6: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज
7: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
6: मस्तिष्क और मानसिक रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण इलाज,
7: चर्म रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण इलाज,
6: नाक कान और गटई सम्बन्धी सम्पूर्ण इलाज,
7: सुगर ब्लड प्रेसर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
7: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
6: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
7: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है।
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465। समय में यहाँ पूर्व सूचना पावा जाए, बाढ़ के जोखिम से जान बचावा जाए, विपद बाजा बजाई के ना आई, मने पूर्व सूचना तो नुकसान होई नदी।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1155 में यहाँ फोन करके नदी के तह और बाढ़ के अवस्था बारे में निःशुल्क जानकारी लीन जाए।
1: स्थानीय सायरन और झंडा, गांव में यहाँ रखा गया सायरन के आवाज लंबा या तो छोट और नदी किनारे में यहाँ रखा गया रंग पेयर सतर्कता लाल खतरा के अर्थ समझो।
0: संचार माध्यम, स्थानीय एफएम रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल में यहाँ आवा नेपाल टेलीकॉम एनसीएल के अलर्ट एसएमएस नियमित देखा जाए।
1: नदी के जलस्तर नापे वाला खंभा के रंग के बारे में जानकारी दी जाए। पेयर रंग सतर्कता तह नदी में यहाँ पानी की सतह बढ़ते है, सजग रहा जाए और सामान बांधे शुरू की जाए। लाल रंग खतरा के तह बाढ़ कोनो समय में यहाँ गाँव में यहाँ आई सकत है, तुरंत घर छोड़ के सुरक्षित जगह तरफ जावा जाए।
0: बाढ़ आवे चेतावनी पावे साथ एक घंटा पहले करे वाला काम, संपर्क और संचार, परिवार के सब सदस्य लोगन के यहाँ और टोल पड़ोसी के यहाँ सचेत करावा जाए।
1: अत्यावश्यक कागज पत्र और पैसा, नागरिकता, जन्मदर्ता, जगह धनी पुर्जा, नगद और वाटरप्रूफ प्लास्टिक के झोला में यहाँ रख के सुरक्षित रखा जाए।
0: घारी बग्गर के सुरक्षा, घर पलुआ जानवर और चौपायन के यहाँ गटई के डोरी और मुस्की खोल दिन जाए और ऊंचे जगह में यहाँ ले जावा जाए।
1: विशेष ध्यान सौरिहन, गर्भवती, बाल बालिका, वृद्ध वृद्धा और अपांगता भय व्यक्ति लोगन के यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता में यहाँ रख के सुरक्षित आश्रय तरफ ले जावा जाए।
0: स्थानीय सरकार समन्वय में यहाँ संचालित परवल परियोजना द्वारा जनहित में यहाँ जारी।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: आर रेडियो लिए घूमत हो?
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना। और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से
4: दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किराऊ मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार कार्यक्रम चना जोर गरम सुने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो साथी प्यारा से कार्यक्रम लेके आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी पराधिक मैं जो सदा साथी रहा है आज भी हमरे चंदा जी। हाँ तो साथी आज 2083 छः महीना आज 12 गते दिन आज मंगलवार वो सोमवार है यानी आपके जो कुंवार के महीना है। तो साथी आज के कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाल पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 मेगा हर से जो चलत है कार्यक्रम चना जोर गरम जी का आप लोग एकदम ध्यान के साथ में एकदम प्यार प्रेम के साथ में सुना जाए। अरे कार्यक्रम में यहाँ आप लोगों का नंबर माँ जुड़े परी सुन 81415 के लिए नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970 81415 के लाइन में आओ जी। आज के जो हम सिंगर के फिल्म के नाम पूछब का जरूर बताओ जी बताओ ले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी टी शर्ट कहाँ से दिया जी आप लोग जान जाओ जाए आप के जो माना जाना हुआ प्यारा नंबर वन टेलर ज्योति टेलर है जो सदर लाइन में है जहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी जहाँ सब मेरे के लेडीज हैं सड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दौरा सलवार सब मेरे का कपड़ा सियत है वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो पहला नंबर में गाना है आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाए छुप गए सारे नज़ारे वही क्या बात हो गई तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई कौन फिल्म हो कौन गायक लोग गाना का गायन है ऐसे दो नंबर में गाना है जो आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाए मिलो ना तुम तो हम घबराए मिलो तो आग चुराए हमें क्या हो गया है कौन फिल्म हो कौन गायक लोग गाना का गायन है। तो साथ ही एकदम नंबर में जुड़ा जाए सुना 81415 के लाइन में आवाज आए तो बोले सुना जाए प्यारा से गाना है ना चंदा जी प्यारा से गाना गाना भी बहुत अच्छा है मेरे मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम।

0: जनता केबल 5 दशक देखी।
1: पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया।
2: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।

हाँ तो सुरताई प्यारा से गाना सुनागा। मेरे मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो, हमारे कर्म नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो सुरता नेकी जरूर किया जाए और आपके नेकी सदा कामे आई। तो साथी नंबर में जुड़ा जाए, सुना कैसी 415-122 के लाइन में एकदम आवाज आए। कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के प्यारा कार्यक्रम जो ही 1 बजे से 3 बजे तक रही, जिमा आपका क्वेश्चन है जो आज सिंगर के बारे में है, यानी फिल्मी दुनिया के बारे में है, गायककार फिल्म के नाम बताओ जी। आपका पुरस्कार टी शर्ट मिली ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है, जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स कपड़ा सेत हैं, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो पहला नंबर में गाना है, गाना आप लोग एकदम सुना जाए। छुप गए सारे नज़ारे वही क्या बात हो गई, तूने काजल लगाए दिन में रात हो गई। एक नंबर में ही वहाँ के फिल्म कौन हुए, गायककार कौन हुए, ऐसे दो नंबर में गाना है, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, कौन फिल्म हुए, कौन गायक लोग ही गाना का गाए नहीं, ऐसे आप लोगन के समझ में रखा है। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लाइन में आवाज आए, लगी पे लगाओ, तकदीर का आजमाओ, जीता जाए प्राइज और ज्योति टेलर से ले जाओ। तो इससे हमारे हाथ में मैसेज भी आएगा है, मैसेज भेजे वाले हैं, मैसेज लिखी नहीं। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है, ये लिखे वाले हैं खजुरा बाजार से मैसेज भेजे है नान बाबू पवना जी, लिखी नहीं कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है मियाँ जी, आपके कार्यक्रम हम बहुत बराबर सुनित है, धन्यवाद है आपका। तो ये कहने हमका गाना सुना दिया जय, जैसे मेरे बच्चे मन के सच्चे, चंदा जी मेरे बच्चे मन के सच्चे, ये तो जन्मदिन के ऊपर क्या है गाना है ना। तो कहीं नहीं गाना सुना दिया जी, मेरे बच्चे मन के सच्चे, ठीक है मैं गाना आपका सुनेबे। गाना सुने वाले इनके घर परिवार माँ बीबी बच्चे घर परिवार हैं, ऐसे विनोद हैं, विनय हैं, राजा बाबू हैं और तमाम मिला हैं, काजल हैं और तमाम घर परिवार का सुनाओ चाहिए। इसे राजू पान वाले मैसेज भेजे नहीं, इन्हों कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, इन्हों कहने कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके बोली आपके अंदाज बहुत अच्छा लागत है। तो साथी धन्यवाद है, इन्हों कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जाए। इसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजे वाले हैं बिंदुश्री ठाकुर खजुरे बाजार पेट्रोल पम्प से, जो नीतू हेयर कटिंग सैलून से, इन्हों कहने कि नमस्कार मियाँ जी, नमस्कार नमस्कार आपका भी। तो ये कहने कि कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। साथी हैं शंकर हैं, मुरारी हैं, किशोरी हैं, ऐसे तमाम साथी लोगन का सुनावा चाहित है, हाँ धन्यवाद है। ऐसे आप लोग मैसेज पठौते राजी 98-55-96-306 मा, और हमारे तमाम साथी लोग फ़ोन लाइन में भी जुड़ा जी 98-0-81-422 के लाइन में फ़ोन लाइन में जुड़ा जी और मैसेज भेजा जी 98-55-96-306 मैसेज भेजा जी। तो साथी ऐसे आप लोग मैसेज पठौते रहा जी। अब हम चले थे पहले प्यारा से गए मेरे बच्चे मन के सच्चे, सुना जाए प्यारा से गाना और मनोरंजन लिया जाए।

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट।
1: माया बाबू टेलर के तो सकु सामान हो गिल बा, अब मशीन कहाँ से नन्ना हो।
2: छी दादू फिर ठहानी हो कि का उहट हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स।
1: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन बैठे हैं बाबू?
2: उहाँ तो अनमोल उषा और ताज ब्रांड का संग मेर मेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री वो मरमत कई जी था। एक रख संग संग मशीन संबंधी सबको पार्ट पुर्जा वो सामान फे पाजी था। अट्रगेल कहाँ हो कुशल कारीगर हुकन से मरमत फे करा जी था।
3: एक एक संगे दस्या देवारी हो छठ त्योहार सम 5-30% सम ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
1: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर घरबाई टोल 2 पीपल चौतरा नेपालगंज बाके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 98481-28-318 और नंबर बा 98224-52-478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
4: आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटुरोग विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर विकास नेपाल तेजस्वी हट सेन्टरमा आफ्नो सेवाहरू दैनिक रूपमा प्रदान गरिरहनु भएको यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछौँ।
5: उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रल, सुगर, मधुमेह, मुटु दुख्ने, हिँड्दा छाती भारी हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खुट्टा सुनिने, शरीर सुनिने, चक्कर लाग्ने, बेहोस हुने, हर्ट अट्याक, हर्ट ब्लक, मुटुको बाथरोग, मुटुको पेसमेकर हालेको वा हाल्नुपर्ने, एन्जियोप्लास्टी गरेको वा गर्नुपर्ने, बाइपास अपरेसन गरेको वा गर्नुपर्ने, मुटुको भल्भ फेरेको वा फेर्नुपर्ने र रगत पातलो बनाउने औषधि प्रयोग गरिरहेको बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।
4: उपलब्ध सेवाहरू
5: ईसीजी, इको, टीएमटी, 24 घंटे होल्टर, एबीपीएम, ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल र मुटु रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच, रगत सम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षणका साथै सम्पूर्ण प्रकारका जाँचहरू गरिन्छ।
4: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म, दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म, साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म।
5: सम्पर्क नम्बर 081-536-667, 98215-97532। ठेगाना गणेशमान चोक भेरी अस्पताल जाने बाटो नेपालगञ्ज।

0: हाँ तो श्रोता ही प्यारा से गाना सुनागा छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415 सेवा इसके लाइन में आ जाए, कैसे ही कार्यक्रम जो चलता है आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर आप ही के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 मेगाहर्ट्ज़ से ऐसे हमरे हाथ में मैसेज आएगा, मैसेज भेजे वाले हैं लिखने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था, आपके कार्यक्रम की तारीफ जितने किया जाए उतने कम है। ये मैसेज भेजे वाले साथी हैं वार्ड नंबर 14 भवानी बगिया से मैसेज भेजी ने राजीव मौर्या जी, कह रहे कि आपके कार्यक्रम के हम नेमी श्रोता हैं, आपके कार्यक्रम हम बराबर चाहे जहाँ रहे मगर आपके कार्यक्रम के समय हम रेडियो के करीब जरूर आए जी थे, धन्यवाद है। तो कहने कि हमका गाना सुनाए दिया जी, चलो भाग चली पूरब की ओर, ठीक है हम गाना आपका जरूर सुनेबे, चलो भाग चली पूरब की ओर। तो कहने हमका राजीव मौर्या के चिन्हे जाने ले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहते, ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415 से बैस के लेन में आ जाए। पहला नंबर में गाना है जो मिलो न तुमको हम घबराए, मिलो तो आग चुराए हमें क्या हो गया, कौन फिल्म है कौन गायक लोग गाना गाए ने। ऐसे दो नंबर में गाना है पहला नंबर में गाना रहा है आप लोग छुप गए सारे नज़ारे, वही क्या बात हो गई तूने काजल लगाए दिन में रात हो गई। दो नंबर में है मिलो ना तुमको हम घबराए, मिलो तो आग चुराए हमें क्या हो गया। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जाए, कौन फिल्म है कौन सिंगर लोग ही गाना का गाए ने, उनका जो सही उत्तर देगा सही उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट देवे। टी शर्ट कहाँ से देवे आप लोग भी जाना जाता है, आपके माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है जहाँ से आपका टी शर्ट दिया जाए। ऐसे दूसर मैसेज पठन है हमरे मैसेज भेजे वाले हैं संगम टेलर से मैसेज भेजने कृष्णा परियार जी लिखने सबसे पहले मियाँ जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तो आपका भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते है, कहने आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है और कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। गाना सुने वाले हमारे तमाम साथी हैं जैसे सुभाष परियार हैं और मोहम्मद अफरोज जी हैं और तमाम साथी लोगन का अपने स्टाफ का सबका लोगन का सुनाओ चाहिए थे, धन्यवाद है कृष्णा जी। ऐसे दूसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं मैसेज आवा है लिखी ने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार, तो नमस्कार है। अकल घरवा से मैसेज भेजी ने माधोराम यादव जी लिखी ने मियाँ जी कोई प्यारा से गाना सुनाए दिया जी, हमका माधोराम यादव कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहिए थे, जैसे अपने घर परिवार का और अपने चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहिए थे, धन्यवाद है। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुनो 81415 के लाइन में आओ जी, नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970-81415-122 के लाइन में आओ जी। ऐसे दूसर मैसेज है मैसेज भेजे वाले हैं कोई साथी मेरे फोन लाइन में है, पहले उनका स्वागत कर ले, देखी को कहाँ से हैं, नमस्कार। वालेकुम सलाम, आपके नाम?
1: मुन्ना सलमानी बोली से।
0: हाँ मुन्ना जी और बढ़िया है?
1: हाँ सब बढ़िया, आपने कहा
0: है?
1: अरे आप सुनाओ।
0: हाँ हमरो लोगन के बढ़िया है,
1: हमका एक गाना सुना दो, गांव का मेला मेले में लड़की उसका नाम सन्नो।
0: दुनिया का मेला?
1: हाँ दुनिया का मेला मेले में लड़की
0: मेले में मेले में मुन्ना मुन्ना का नाम सुनना। ठीक है सुनाए देवे, नमस्कार।
1: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो साथी मुन्ना सलमानी रहा है हमरे जो गाना के फरमाइश करे हैं दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो नाम उसका। ठीक है चंदा जी दीवाना है जनो हमका लागत है। मुन्ना जी हमरे तो साथी इससे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415 के लाइन में। ऐसे साकिर अली उर्फ बंटी पतंग वाले जो एक लैनी बाजार से मैसेज भेजी ने कहने मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम, इन्हो कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी, हमका साकिर अली उर्फ बंटी पतंग वाले के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहिए। ऐसे दूसर मैसेज है मैसेज भेजे वाले हैं गोमती प्रसाद वर्मा, जानकी गांव पालिका 3 बंजारे गांव से। कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है नो। कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। गाना सुने वाले हमारे तमाम साथी हैं, घर परिवार माँ चिन्हे जाने वाले सबका सुनाओ चाहिए। ऐसे दूसरा मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले हैं भद्रा सिंह सिरपाली, मैसेज भेजी नैसी गांव वाके से इन्हों। कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है। कहने की गाना हमका सुनाए दिया जी, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीना मौसम जाड़ों का। ठीक है, कोशिश कर बे भद्रा जी, आपके तो यही गाना मनमा बसा है। ऐसे दूसरा मैसेज है, मैसेज भेजे वाले हैं विजय वर्मा जो शिवानी गिरी उद्योग, हाँ जो 4 बाबा कुट्टी जो इमला पुल से जो शिवानी ग्रिल से मैसेज भेजी है, जहाँ सब मेरे के झाल दरवाज़ा वगैरह वगैरह यानी लोहा के काम बना थे, हाँ वहाँ से। कहने की मियाँ जी हमका कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी, हमका विजय के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का, अपने घर परिवार का सुनाओ चाहते। आपके रेडियो जहाँ तक बाजत है तहाँ तक सब लोगन का सुनाओ चाहते, विशेष कहके अपने पड़ोसी में यहाँ जो हमरे खेमराज सोनकर हैं, हाँ ठेकेदार, उनका विशेष कहके सुना चाहते। तो साथी अब हम चले थे, पहले प्यारा से गाना सुना जाए कि विज्ञापन तरफ चला जाए। पहले चले थे विज्ञापन के बाद माँ सुना जाए प्यारा से गाना।
2: रंग बहार रंग बहार
3: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
2: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
3: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
2: बर्जर पेन्स।
4: बीर डेंटल
5: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामी छाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
6: डाक्टर लामी छाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
5: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
6: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
5: विशेषताहरू दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
7: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
8: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
9: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
8: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
9: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाईटेक अपरेशन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
8: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
9: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
8: सम्पर्क नम्बर 081535717।
4: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
10: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
4: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: मुझे आराम से बैठने दो मेरी माँ हे रावण की बहनों हे मेघनाथ की फूफियों और रावण की बहनों बताल का कोई स्वरूप ने कहा मुंडी पीछे करा
2: कलयुग की कन्या
1: कामनी जी मुझे तो आपने बुलाया था ये नंगी भैंसों की फौज कहां से आ गई मुझे फंसा लिया

हाँ तो श्रोता ही प्यारा से गाना सुनागा, चलो भाग चली पूरब की ओर। खैर गाना बहुत अच्छा रहा, तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 4-15 से बैस के लाइन में आ जाए, कैसे ही कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पार देश विदेश यानी हर जगह खेत खरियान डाड़ पार देश विदेश यानी हर जगह।

0: आए मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया, कोई साथी है देखी को, कहाँ से नमस्कार।
1: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, आपके नाम?
1: भादरा सिंह शेरपाली, सी गांव से।
0: सी गांव से
1: जी।
0: और भद्रा
1: ठीक है जी, आपका क्या हाल है?
0: बस ठीक है।
1: चंदा जी कार्यक्रम नया आओ से कहा बात।
0: हाँ काल आई, काल आई,
1: कल से, मंगल से।
0: हाँ काल मंगल के आई।
1: अच्छा अकेले?
0: काल इतवार के नहीं सुने रहा हो?
1: नहीं सुने रहे, बारिश हवा रहा तो बारिश में कोई रेडियो सोसू सोसू करत रहा।
0: सोसू सोसू रेडियो करता है?
1: हाँ वो बारिश से।
0: अरे भद्रा जी, अरे भद्रा जी, लाग दिया कड़ोर पावा, ऐसा दोस्त से हम मजा बहुत पावा। और बतावा जा गांव घर के हाल चाल का है?
1: बस बढ़िया है, कोई नुकसान नुकसान नहीं किया है अभी तक, धान के थोड़ा बहुत धान गिरावा है।
0: तो धान तो भीज गा, मुड़वा पर हाथ धे के रोवे किसनवा, वर्ष गवा देवा सब सरी गवा धनवा।
1: नहीं अभी तो इतना वो तो नहीं है।
0: अरे इधर और हमरे गांव तरफ तो सब पूरा पानी ऊपर है, धान नीचे है।
1: तो अमिला में खोल दो, फरुआ लेके चले वो।
0: अरे तो जत्ता तानी होते तो रोज रोज बारिश होत है।
1: नौकर वोकर को ना भेजियो, तुम खुद चले हो फरुआ वरुआ लेके।
0: अच्छा ठीक है, हम ही जेबे फरुआ लेके नाला खोदे आए। तो तुम आयो?
1: हाँ आई जा रहे, मछली वछली खाए ली केंद्रीय के।
0: अच्छा वो गायककार के नाम बताओ जो सिंगर के।
1: प्रश्न नहीं सुने हैं लेकिन जानने में तो नहीं, फिर भी प्रश्न बोलिए।
0: पहले पहले गाना पहले गाना है ना?
1: हाँ जी।
0: छुप गए सारे नजारे, वही क्या बात हो गई, तूने काजल लगाए दिन में रात हो गई, एक नंबर में है। कौन सिंगर गाना का गायन है, कौन फिल्म है, दो नंबर में गाना है। आप लोग मिलो ना तुमको हम घबराए, मिलो तो आग चुराए, हमें क्या हो गया है, कौन फिल्म है, कौन सिंगर गाना गाया है?
1: तो फिल्म तो दोनों देखा है, गाना भी सुना है, लेकिन गायकार का नाम नहीं जानते।
0: बहुत पुराना
1: हम शादी नहीं किया था तब से देखे हैं फिल्म।
0: अच्छा पंजाब में यानी मर्द हो? मर्द है नहीं?
1: हाँ
0: मगर जानन नहीं हो। ले ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
0: आज साथी भद्रा सिंह शेरपाली रहे सी गाँव बांके से। तो साथी इसे सुने क्या सी 415 122 के लाइन में आ जाए, कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलित है। अब हम छोटा सा व्यापारी, हाँ कोई साथी फोन लाइन में है देखी पहले को कहाँ से। नमस्कार।
2: नमस्कार मियाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपके नाम?
2: मोतीलाल यादव, बाकी गांव से बोले थे।
0: मोती जी।
2: हाँ
0: और बढ़िया?
2: एकदम बढ़िया।
0: बढ़िया हो चाहिए और का। तो कार्यक्रम शुरू से सुना था?
2: हाँ अब सुने हम।
0: अब भाई सुने हो?
2: हाँ अब भाई भद्रा सिंह जी आए हैं तब सुने हम।
0: हाँ कहाँ रहे हो?
2: रहन काम में नहीं, अब आए तो हम कहना देखी आज कार्यक्रम, कोई कोई दिन आओ थे कोई दिन नया आओ थे का वही मारे हो।
0: अच्छा धान वान उचियावत रहे हो ये नहीं?
2: ना ही धान वान उचिया वाला हमारे ना है, धान नुकसान ना है बाबा है।
0: नहीं भाई, अरे ले मालिक भला करे से नहीं है तुम्हारे, हमारे गांव तरफ तो बहुत नुकसान है।
2: हाँ बहुत मिला के धान थोड़ा बहुत गिर गया है, लेकिन अगर जब बूढ़ गया उनका क्या करा जाए?
0: अरे तब तो कहा करा जाए, उन्हें कहते तुम्हें तारो तुम्हें।
2: हाँ, असली किसान तो वही है।
0: हाँ चाहे तो भाई 4 दिन में घाम तड़क हो जाए, पानी कट जाए, इधर उधर सुखाई जी।
2: हाँ
0: अच्छा तो कार्यक्रम शुरू से नहीं सुना गया, बिच्चे से सुना गया है?
2: हाँ सुने हम, बताए हम फिल्म बोले के सुने।
0: हाँ बताओ।
2: एक नंबर के हो दो रास्ते फिल्म।
0: हाँ
2: लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज है।
0: हाँ
2: और दूसरा हीर रांझा फिल्म हो, मैं खाली लता मंगेशकर की आवाज है।
0: ठीक है नमस्ते।

0: नमस्कार,
1: सुनो ना से कहा तीसरा जो गाना,
0: कौन गाना?
1: अरे कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम।
0: अच्छा, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम।
1: हाँ
0: ठीक है,
1: चाहे जमाना करे लाखों सितम।
0: ठीक है, ना छोड़ो ना।
1: बद्रा सिंह का नमस्कार करे चाहे थे।
0: अरे
1: नमस्कार,
0: भद्रा सिंह का नमस्कार कर। भद्रा सिंह वहाँ कूदत हुई है खूब गमा गम।
1: चलो ठीक है, फाने तो बढ़िया है।
0: हाँ ठीक है, नमस्कार। हाँ साथी, हमरे मोतीलाल यादव जी रहे हैं बाकी गांव से। तो साथी ऐसे अब हम चलित है पहले 2 बजे के टेम चेक के बाद में आप लोग सुना जी छोटा सा व्यापारी विज्ञापन। विज्ञापन के बाद में गाना है मेले में लड़की अकेली सन्नो। हाँ कौन गाना? हाँ ठीक है, तो अब हम चलित है पहले टेम चेक के बाद में सुना जाए व्यापारी विज्ञापन। विज्ञापन के बाद में कोई भी गाना आप लोग सुना जाए।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजे को छ।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।

0: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है। कहाँ जाये तो ठीक रही, तनी बताए दो हमका।
1: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथे टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
0: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथे आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
1: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037। नींद न आए हमको हाय
0: जग सोना है। भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
2: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
0: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
2: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 9749117886982242942377।
4: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
5: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्नीचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
6: हरेक सामान को खरीद में 1000 देखि 20000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारेन्टी साथै फ्री डेलिभरी को सुविधा पनि
7: अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
5: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
6: सम्पर्क 9705118470।
5: सोफा हब नेपालगंज,
6: विश्वासमा नम्बर 1,
5: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हरेक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 0815364665, 9829408665 और 9842880465। समय में यहाँ पूर्व सूचना पावा जाए, बाढ़ के जोखिम से जान बचावा जाए, विपद बाजा बजाई के ना आई, मने पूर्व सूचना तो नुकसान होई न दी।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1155 में यहाँ फोन करके नदी के तह और बाढ़ के अवस्था बारे में निःशुल्क जानकारी लीन जाए।
2: स्थानीय सायरन और झंडा गांव में यहाँ रखा गया सायरन के आवाज लंबा या तो छोट और नदी किनारे में यहाँ रखा गया रंग पेयर सतर्कता लाल खतरा के अर्थ समझो।
0: संचार माध्यम स्थानीय FM रेडियो टेलीविजन और मोबाइल में यहाँ आवा नेपाल टेलीकॉम NCL के अलर्ट SMS नियमित देखा जाए।
2: नदी के जलस्तर नापे वाला खम्भा के रंग के बारे में जानकारी दी जाए। पेयर रंग सतर्कता तह नदी में यहाँ पानी की सतह बढ़ते है सजग रहा जाए और सामान बांधे शुरू की जाए। लाल रंग खतरा के तह बाढ़ कोनो समय में यहाँ गाँव में यहाँ आई सकत है तुरंत घर छोड़ के सुरक्षित जगह तरफ जावा जाए।
0: बाढ़ आवे चेतावनी पावे साथे एक दुई घंटा पहले करे वाला काम संपर्क और संचार परिवार के सब सदस्य लोगन के यहाँ और टोल पड़ोसी के यहाँ सचेत करावा जाए।
2: अत्यावश्यक कागज पत्र और पैसा नागरिकता जन्मदर्ता जगह धनी पुर्जा नगद और वाटरप्रूफ प्लास्टिक के झोला में यहाँ रख के सुरक्षित रखा जाए।
0: घारी बग्गर के सुरक्षा घर पलुआ जानवर और चौपायन के यहाँ गटई के डोरी और मुस्की खोल दिन जाए और ऊंचे जगह में यहाँ ले जावा जाए।
2: विशेष ध्यान सौरिहन गर्भवती बाल बालिका वृद्ध वृद्धा और अपांगता भय व्यक्ति लोगन के यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता में यहाँ रख के सुरक्षित आश्रय तरफ ले जावा जाए।
0: स्थानीय सरकार समन्वय में यहाँ संचालित परवल परियोजना द्वारा जनहित में यहाँ जारी

0: जनता केबल पांच दशक देखी।
1: विश्व सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया, विश्व सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया।
2: रेडियो कृष्ण सार एफ एम 94 मेगाहर्ट्ज़, कृष्ण सार जस तेज।

हाँ तो श्रोताई, छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, प्यारा से गाना सुना गा। खैर आप लोगन का गाना भी अच्छा लाग हुई तो इसे सुने कैसी 4-15-122 के लाइन में आ जाए। कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान कान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 MHz से। तो पहला नंबर में गाना है छुप गए सारे नजारे वही क्या बात हो गई तूने काजल लगाए दिन में रात हो गई। कौन फिल्म हो कौन सिंगर लोग का एक गाना का गायन है। हाँ इसी दो नंबर में गाना है मिलो न तुमको हम घबराए मिलो तो आग चुराए हमें क्या हो गया है। कौन फिल्म हो कौन गायक लोग गाना गायन है। साथी दोनों का सही उत्तर दिया जाए, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। ऐसे ही सुनने के 84-15-122 के लाइन नेपाल के साथी आओ जी। नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-4-15-122 के लाइन में हमारे देश विदेश पड़ोस भारत के साथी आओ जी। और मैसेज में आपका जो मैसेज पठवे का है तो 98-55-96-306 में मैसेज भेजा जी। और फोन किया जी सुनने के 84-15-122 के लाइन में हमारे नेपाल के साथी। और एक कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है जहां से आपका पुरस्कार दिया जाता है। जहां सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब मेरे के कपड़ा असियत हैं वहां से आपका पुरस्कार दिया जी। तो साथी ऐसे आपके मैसेज हमारे हाथ में आ चुका है। ये मैसेज भेजे हैं, मैसेज भेजे वाले मुकेश कुमार बरनवाल जिला बिजनौर से मुकेश कुमार बरनवाल जी लिखने। सबसे पहले मियां साहब आपको नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। कहने के आपके कार्यक्रम मुझे बहुत ही पसंद आता है, आपकी आवाज़ आपकी बोली बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद है मुकेश कुमार जी। तो ये कहने के हमको गाना सुना दिया जी, मेरा गाँव मेरा देश फिल्म का गाना है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। ठीक है मुकेश जी, हम ये आपका गाना इतनी दूर बिजनौर से आप मैसेज भेजा गया है आपका हम गाना ज़रूर सुने भाई। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। ठीक है गाना हम आपका एकदम रेडी गाना कह दिया है आपके मुकेश जी। तो कहने कि मियाँ साहब क्या करें, माता बागेश्वरी मंदिर में आने का इच्छा कहता था मगर आ नहीं पाए, जब आते तो आपसे मुलाकात हम ज़रूर करते। अरे माता बागेश्वरी के मंदिर के बहाना आई जाओ जाए, यहाँ आपका मिली पानी और खाना सब चीज़ मिली मुकेश जी। आप हमरे 5-7 साल से हमरे सुरता नेमी सुरता हो। तो कहने की मियाँ जी आपके कार्यक्रम के हम बहुत एकदम दीवाना हैं और हमारे तमाम साथी लोग भी कार्यक्रम आपके सुनत हैं। ऐसे जयसपुर वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर चौराहा से मैसेज भेजी ना अमरलाल सोनी जी ने लिखने की मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, ये कहना है कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है तो धन्यवाद है अमरलाल जी। कहने अब सिख बजे वाला गाना सुना दिया जी। साथी हैं रघुनाथपुर के अशोक सोनी कुड़वा के ओंकार ना सोनी प्रेमलाल आरती पूजा ज्योति सीता गीता अंजनी और तमाम साथी लोगन का सुनावा चाहिए। तो साथी अब हम चले थे पहले छोटा सा हाँ सुना जाए प्यारा से गाना। कौन गाना है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए कि कौन गाना है। हाँ साथी आपका भी गाना सुने मिली मगर ये गाना के बाद में मुकेश जी गाना ज़रूर। हाँ तो श्रोता आप लोग एकदम रेडियो से जुड़े रहा जी। अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन वो प्यारा से गाना कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। पहले गाना सुना जाओ के बाद में आप हम फिर मिला जी नंबर में जुड़े रहा जी।

0: हाय के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दैछ, थाइराइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
1: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
0: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
1: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
0: कस्तो खबर?
1: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबाम राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियू, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गंगाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
0: ए साँच्चै?
1: अझै सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
0: ए त्यो त झन् राम्रो
1: हो नि। डाक्टर पूनम आचार्य एमबीबीएस, एमडी केयू, आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई एमबीबीएस, एमएस केयू, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
0: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
1: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्, दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
0: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
1: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
0: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
1: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू: एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580304 र 98481380।
4: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
4: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
5: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसीयू, पिआइसीयू, आइसीयू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
4: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
4: सम्पर्क नम्बर 081535717।
6: बाबा के कान पीड़ा थे, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। यतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत है। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
6: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
7: हाँ तो समय में ही दवाई करावे, दवाई दरमत संभव है।
8: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्राली, नेपालगञ्ज 6 फुलटेग्रा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बाँके। संचालक पूरन चौधरी। सम्पर्क नम्बर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
9: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
10: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
11: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ ही तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
10: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
11: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
10: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
11: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
10: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
11: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
10: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
11: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवक जानकारी भी करावा जाता है।
10: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
11: संपर्क नंबर 081536465, 98239806665 और 98482804665।
12: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
13: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
12: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
13: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आईबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
14: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
12: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
13: धन्यवाद शुभश्री आईबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
14: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईबीएफ क्लिनिक, सोल्टी मोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 98161469।
15: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।

हाँ तो श्रोता ही छोटा सा व्यापारी विज्ञापन प्यारा से गाना के बाद में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो कार्यक्रम में यहाँ आप लोग नंबर में आ जाए सुने कैसी 415-122 के लाइन में आ जाए कैसे ही कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर आप ही प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 MHz से चलत है। तो साथ ही कार्यक्रम सुना भी जाते देखा भी जाते तो साथ ही हमरे हाथ में मैसेज भी आएगा। मैसेज भेजे वाले हैं सऊदी से मैसेज भेजे ने मुबारक खां जी लिखी ने। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है इनके ठिकाना है नेपाल के खजुरा गांव पालिका वार्ड नंबर 5 रजनवा बाकी के बासिंदा हैं मगर सऊदी अरब महान। मियाँ जी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है हम बराबर सुनित है एकदम रेगुलर कार्यक्रम का सुनित है धन्यवाद है मुबारक जी। तो कहने हमारे घर परिवार में पापा महमूद खां है बेटा लड़का हसनैन खां है और बैदू यादव है सुरेश है तमाम साथी लोगन का गोमती बनिया का तमाम साथी लोगन का सुनाओ चाहिए कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। ऐसे दूसरा मैसेज आएगा है मैसेज भेजे वाले हैं जिला बहराइच उत्तर प्रदेश भारत से मैसेज भेजे ने नवाबगंज अलियाबाद से इश्तियाक खान जी लिखने की। सबसे पहले मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम कहने आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है गाना हमका मर्द फिल्म के सकबर कोशिश करी करा जी मर्द फिल्म के सुना दिया जी। हम तो तंबू माँ बम्बू लगाए बैठे ठीक है अब गाना आपके तो न बज पाई मगर गाना अगले कार्यक्रम में हम नोट करके रख लिया है अगले कार्यक्रम में हम आपका मर्द फिल्म के गाना जरूर सुना देवे इश्तियाक जी कहने कि हमका इश्तियाक के चिन्हे जाने वाले सब लोग। तो सुना जाए प्यारा से आप लोग गाना दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो नाम उसका।

0: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास हुए। वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
1: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथ गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
0: विशेष सुविधा
1: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
2: देर न कीन जाए, आजे स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081 530 598।

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज

हाँ तो सर तो आपका क्या जाए कार्यक्रम के एकदम अंत अंत में अब आपके फोन भी ना ले पेबे आपके मैसेज भी ना पढ़ पेबे कहे से अब साथी आप लोगन के समझ में एकदम कार्यक्रम के अंत अंत में तो साथी ऐसे आज के हमारे फोन करे वाले साथी मुन्ना जी रहे नेपालगंज बाके से भद्रा सिंह सिरपाली रहे सी गाँव बाके से मोतीलाल जी रहे नेपालगंज बाकी गाँव से तो साथी आज के कार्यक्रम जो आप लोग अपने अपने जगह पर सुनागा बैठ के देखा सुनागा और ये कार्यक्रम में फ़ोन किया गा मैसेज पठवागा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दी थे मगर आज के विजेता मोतीलाल यादव भी हैं हमरे बाकी गांव बाके से हाँ छुप गए सारे नज़ारे वो क्या बात हो गई तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई हाँ फिल्म रहा है दो रास्ते फिल्म के गाना होए गायककार रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफीक हाँ साथी बहुत सही बताई ना इसे दो नंबर में गाना रहा है फिल्म हीरा झा रहा है गाना के बोल रहा है मिलो न तुमको हम घबराए मिलो तो आँख चुराए हमें क्या हो गया है गायककार रहीं लता मंगेशकर जी तो आपका बहुत बहुत बधाई है मोतीलाल जी आई कार्यक्रम के परिजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के उनके पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद दी थे कार्यक्रम का देश दुनिया में पठाइन हमरे प्राप्तिक में यहाँ जो साथी चंदा जी उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते प्यारा से गाना के साथ माँ हम संचालक मियाँ जी बिदाली से गाना के साथ माँ हम संचालक मियाँ जी बिदाली

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: గౌదైదేస్ మీరు ఎవరెస్ట్
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
2: एक दफे सेवा करे मौका दी जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
3: नींद ना हमको है जग सोना
4: है। बीर डेंटल बीर डेंटल बीर डेंटल
5: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
6: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दांत सफा गर्ने दांत भर्ने दांत निकाल्ने दुखेको दांतको जराको उपचार खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दांत राख्ने बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दांत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाउने गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने रगत आउने पिप बग्ने मुख गनाउने र दांत हल्लिने समस्याको उपचार पहेलो खैरो दांत सानो र ठूलो दांत छिद्र तथा ग्याप भएको दांतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधि द्वारा राम्रो बनाउने दांत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारोका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
5: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
6: फोन नम्बर 081-532-375।
7: बाबा के कान पीरा थे, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
8: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। यतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में यहाँ ढूसी भवा कान खजुआब कान से कम सुनाई देव कान बंद हो बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा कान के जाली में छेद भवा कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी सीआईसी आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
7: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
8: हाँ तो समय में ही दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848-2697 9858-2397 और 9814-83-697।
9: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
7: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही?
8: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
7: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
8: सुनो, हुआ औरतन के बाँझपन सफेद पानी महीनावारी में गड़बड़ी गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया एपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यूं गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
10: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुल निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
8: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97 46 11 786 98 224 92 377।
11: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
12: Back to back.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: समय बदलियो पुस्ता फेरियो तर साथ साथ

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: रंगाउ देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: या के
1: ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी